0: उजान रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
1: तुझे लगे ना नजरिया

बिन कोटरावर तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है सुनवालो, तो डीजे आर फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

उजाला रेडियो पर आप गीत को सुने, फिल्म का नाम दिल क्या करे। अगला गीत जो प्रोग्राम में होंगे सुनने वालों, पेश है आदिनाथ मंगेशकर एंड ज्योत्सना हर्दिकर, इन लोगों की आवाजों में। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए उजाला.nl आप जरूर देखें।

दिल खिले और जीने को मुझे क्या चाहिए। फिल्म क्रिमिनल का गीत फिर से सजाइए और गाए गए उजाला रेडियो पर आप सुने।

मुझे तेरी जरूरत है. दिस वाज द रीमिक्स गाना आउट ऑफ फिल्म एक विलन एन मैशअप गाना मेट अलालाई क्लाइनस स्टुकिस आउट दिस फिल्म. उजाला रेडियो है ये सुनो वालों, मैं हूं आपका सेवक अमित जयराम. हेलक गाना बजाना, हेलक वेरिएट्स बाय द वन एंड ओनली सबसे बरकावाला.

तेरी मेरी थी तेरी मेरी है बात ये झूठी है. फिल्म का नाम है जीरो. अनबेकेंड स्टेम द सिम्फनी मत मिंदर दान कुनाल गंजवाना वजदत. और ये है सुकृति कक्कर की आवाज. फिल्म का नाम है माफियान.

मैं दीवाना तेरा मैं आशिक पुराना तेरा मैं दीवाना दीवाना दीवाना दीवाना तेरा मैं यावेल आज हम पेश करेंगे खफारियर द खफारियर गाना और मुझे आशा है कि आप गाना को पसंद और एंजॉय करेंगे फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता और गाना का नाम है दैया दैया दैया दैया दैया दैया दैया रे या द सिम्फन अलका

बड़ी अच्छी है अलका याग्निक की आवाज. फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता. दैया दैया दैया रे. उजाला रेडियो है सुन वालों, मैं हूं आपका सेवक अमित जयराम. हिलक गाना खफर ये गाना. Ik hoop dat je nog lekker aan het genieten bent. En anders ik wel. Op de playlist heb ik hier de film Kabir Singh, de stem van Armaan Malik. In deze prachtige song Pehla Pyaar.

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अलमेर से परिवार नेपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 81 साल की आयु में एनन तख्तख यार औत स्वर्गीय धर्म पत्नी स्वर्गीय पंडिता यशोमती नेपाल कन्हाई सिंह का पति लड़कन राजकुमार नेपाल, अनिल कुमार नेपाल और पवन कुमार नेपाल के पिता, पोता अक्षय कुमार, पोतिन विभा नेपाल और पोतिन चांदनी जुनेया के आजा, पोदमाद रॉय का अजवा ससुर और परनातिन अमायरा का परनाना, अम्स्टरडम टेक्सेरा द मतोस्त्रात का रहने वाला श्रीमान हरिदत्त अयोध्या प्रसाद नेपाल की मृत्यु वोन जोरग सेंट्रम एबनहेजर अम्स्टरडम जैतोस्ट में हो गई है। जोधा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले निकेरी राम अवध सुचित वह का रहने वाला था। अलमेर से लड़कन नेपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 81 साल की आयु में एनन तख्तख यार औत स्वर्गीय धर्म पत्नी श्री पंडिता यशोमती नेपाल कन्हाई सिंह का पति लड़कन राजकुमार नेपाल, अनिल कुमार नेपाल और पवन कुमार नेपाल के पिता अक्षय कुमार, विभा नेपाल और चांदनी जुनेया के आजा, रॉय का अजवा ससुर, अमायरा का परनाना, अम्स्टरडम टेक्सेरा द मतोस्त्रात का रहने वाला श्रीमान हरिदत्त अयोध्या प्रसाद नेपाल की मृत्यु वोन जोरग सेंट्रम एबनहेजर अम्स्टरडम जैतोस्ट में हो गई है। जोधा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले इलाका निकेरी राम अवध सुचित वह का रहने वाला जो था। अर्थी के दाह क्रिया ये आज मंगलवार के दिन में 12:30 बजे से फनफ हालफेन किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-23-78-63-61 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार नेपाल के दुख में शामिल है।

और यहीं से उजाला रेडियो पर आप सुनेंगे शोक प्रोग्राम यादें। प्रोग्राम में एक गीत आप सुनेंगे और ये पेश है अलमेर से तीन लड़कन राजकुमार नेपाल, अनिल कुमार नेपाल और पवन कुमार के तरफ से अपने स्वर्गीय पिता स्वर्गीय श्री हरिदत्त अयोध्या प्रसाद नेपाल की याद में 81 साल की आयु में इनकर मृत्यु हो गई है बीते बुध को, जोधा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। तो इन्हीं की याद में अगला गीत जो आप सुनेंगे तो पेश है इन लोगों के स्वर्गीय माँ स्वर्गीय पंडिता यशोमती की आवाज में। गीत आप सुनेंगे

0: भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। और गीत अभी आप सुने शोक प्रोग्राम यादें में, और गीत पेश की गई है अलमेर से सभी लड़कन राजकुमार नयपाल, अनिल कुमार नयपाल और पवन कुमार की तरफ से अपने स्वर्गीय पिता स्वर्गीय श्री हरिदत्त अयोध्या प्रसाद नयपाल की याद में। 81 साल की आयु में बीते बुधिनकर मृत्यु हो गई है अम्स्टरडम में, जोधा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। तो गीत जो आप सुने पेश की गई है इन लोगों की स्वर्गीय माँ स्वर्गीय श्री पंडिता यशोमती की आवाज में। और यहीं तक आप सुने शोक प्रोग्राम यादें।
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ये उजाला रेडियो है आपका सबसे पसंदीदा रेडियो स्टेशन। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार। मुझे एहसास है आप इस घड़ी को बेसब्री से इंतज़ार करते होंगे, क्योंकि संगीत जो हम सुनवाएंगे इसकी खुशबू से मन महक उठेगा। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। शुरू करती हूँ ये दुआ से। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दर्द को समझे, हार्ट जो किसी को मुश्किल वक्त में थाम ले। ऐ मालिक कायनात, सुबह होते ही मेरे अजीजों की दिली मुरादे, ख्वाहिशें उम्मीदें पूरी फरमा। उसकी सेहत मोहब्बत शफ़क़त रहमत रज़क अता फरमा। उनको हर दुख दर्द तकलीफ़ परेशानियों से महफूज फरमा। या रसूली खुदा आसरा दी।

नाते नबी आपने अभी कवाल मोहम्मद शफी नियाजी से सुना। कलाम था अनवर फरूख आबादी का। अब हम आपके खिदमत में मीरा भजन सुनवाएंगे। बोल है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई।

मेरा भजन आपने अभी वनी जयराम और दिनकर कैकनी की आवाजों में सुना। संगीत रचना महान सितार वादक पंडित रविशंकर का था। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपको कई शैलियों में गाने सुनने को मिलते हैं। हमने गजलें चुने हैं सुनवाने के लिए। उम्मीद है कि आप इन गजलों से लुत्फ उठाएंगे। पहली गजल पेश है, पर इससे पहले शेर अर्ज है। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। करूँ न याद मगर किस तरह भुलाऊँ उसे।

शायराना अंदाज में पेश थी ये गजल। कलाम था शायर अहमद फराज का और उस्ताद गुलाम अली की मौसिकी थी। मोहब्बत, मोहब्बत एक एहसास है गहरा सा, दिल से दिल से दिल तक का सफर है प्यारा सा। जो समझ ले इस रिश्ते की ताकत को, उसके लिए जिंदगी है एक उजाला सा। तुम जो पास आ गए है, जो शर्मा गए, राज़े दिल पा गए।

रोमानियत अंदाज में पेश थी ये गज़ल मौसीकी अनु मलिक की थी, कलाम शायर जावेद अख्तर का था। एकदम एकदम भी जिसे दिल से भुलाया ना गया, वो करीब आया तो उसे सीने से लगाया ना गया। अजनबी बन के सरे राह मिले हैं मुझसे, जिनकी दीवार का सर से मेरे साया ना गया। हमसे आया ना गया, तुम से भुलाया ना गया, फासले प्यार में दोनों से मिटाया ना गया।

शायराना अंदाज में पेश थी ये गज़ल मदन मोहन की मौसिकी थी, कलाम था शायर राजेंद्र कृष्ण का। अब हम आपको सुनहरी दौर के कुछ सुनी कुछ अनसुनी गाने सुनवाएंगे, जैसे कि ये गीत।

अमर गीत पेश था राजकुमारी और लता मंगेशकर की आवाजों में। श्याम सुंदर का संगीत रचना था और तर्ज को लिखने वाले थे शायर कमर जलाल आबादी। यूं तो खामोश ही रहती है आंखें, अगर समझ सको तो बहुत कुछ कहती है आंखें। कौन कहता है कि रोती है आंखें। रोता तो दिल है मगर बहती है आंखें।

को जलाए सताए दुखाए, श्री रामचंद्र संगीत से सवारे थे, बोल था शायर पे संतोषी का। उधर तुम हसी हो इधर दिल जवा, सुनाएंगे शहद भरी आवाज़ों में मोहम्मद रफ़ी साहेब और

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसे आप जानते हैं, इस हिस्से का प्रोग्राम में हम अक्सर फिल्मी दुनिया का सुनहरी दौर के महान फनकारों के बारे में बयान करती हूँ, जो आज के दौर की कलाकारों का मिसाल है, प्रेरणा है, फोरबिल्ड है। आज हम एक ऐसे ही फनकार के बारे में बयान करेंगे जो अपनी मखमली आवाज से हम सब के दिलों में घर कर गई। वो गायिका है सुमन कल्याणपुर। वो कौन थी, उनकी पैदाइश कहाँ हुई और किस खानदान से थी, इन सब पर हम तवज्जो देंगे। पर हम इस महान गायिका की आवाज़ में ये गीत सुनवाते हैं।

अभी आपने सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गीत सुना जिसके बारे में हम बयान करेंगे। उनके निजी जिंदगी और संगीत सफर के बारे में हम छोटे रूप में कोशिश करेंगे बयान करने।

0: मांगू।
1: इंडिया में सुपरवाइजर थे। सुमन हिमादी अपनी 5 बहनों और 1 भाई में से सबसे बड़ी थी। माँ सीता हिमादी अपने परिवार के साथ खुश थी। जब सुमन 6 साल की थी तो उनके वालिद की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की वजह से पूरा खानदान मुंबई चले गए। फिर हिमादी परिवार मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में एक अपार्टमेंट में रहते थे। सुमन को बचपन से ही मौसिकी और पेंटिंग में शौक थी। मुंबई में उन्होंने मशहूर सिंध कोलंबा हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की तालीम मुकम्मल किया, पर बचपन में उनका मकसद गायिका बनने को बिल्कुल नहीं थी। सुमन को बचपन से ही ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत शौक था। स्कूल ख़त्म करने के बाद उनकी सलाहियत मतलब इंतखरीत की वजह से उन्हें मुंबई के बहुत ही मशहूर आर्ट कॉलेज सर जी स्कूल ऑफ आर्ट में पेंटिंग पढ़ने के लिए दाखला मिल गया। बातें आगे बढ़ाने से पहले सुनवाते हैं फिल्म जहां प्यार मिले में से ये

महान गायिका सुमन कल्याणपुर की आवाज में आपने भी ये गीत सुना। इस गीत से पहले आपने सुना कि सुमन को बचपन से ही पेंटिंग, ड्राइंग और संगीत में शौक रखती थी, क्योंकि वो ढाका और कोलकाता जैसे जगहों पर रहती थी और बंगाली और मराठी जुबान उनके लिए आसान थी। इसी दौरान उन्होंने पुणे प्रभात फिल्म से क्लासिकी संगीत सीखना शुरू किया। म्यूजिक डायरेक्टर और खानदान की करीबी दोस्त पंडित केशव राव भोले से। पर सुमन ने कहा कि शुरू में उनके लिए गाना अहम नहीं था, सिर्फ पेंटिंग और ड्राइंग में दिलचस्पी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने मौसिकी में ज्यादा ध्यान देने लगी। फिर सुमन ने उस्ताद अब्दुल खान और गुरुजी मास्टर नवरंग से बकायदा सीखना शुरू कर दिया और सुमन की छोटी बहन श्यामा हिमादी भी गायिका थी। सुमन हिमादी ने निखतिन अख्तम फैफ्तख में बिजनेसमैन रामानंद सागर कल्याणपुर से शादी कर लिया, जिसके बाद वो सुमन कल्याणपुर के नाम से मकबूल हुई। रामानंद अक्सर अपने बीवी के रिकॉर्डिंग सेशन में साथ जाता था। सुमन कल्याणपुर की एक बेटी है जिसका नाम है चारुल अग्नि और वो शादी के बाद अपने शौहर के साथ अमेरिका चले गए और चारुल अग्नि को भी एक बेटी है और नाम है ऐशियानी अग्नि और बाद में ऐशियानी अग्नि फैसला किया मुंबई वापस जाने को और वहाँ एक एनजीओ खोली अपने नानी सुमन कल्याणपुर के नाम से। हमने आपको सुमन कल्याणपुर की बचपन और पढ़ाई के बारे में इत्तला किया और किससे उसने शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल किया, पर कब उनकी पहली रिकॉर्डिंग थी एक गीत के बाद बातें आगे बढ़ाएंगे। गीत जो अब आप सुनेंगे फिल्म श्रीमान सत्यवादी में से लिया है। सुमन कल्याणपुर के साथ थे मन्ना देसाई साहब।

इस गीत से पहले हमने आपको सुमन की बचपन के बारे में बतलाई और उसे किस किस से अपनी मौसिकी की तालीम हासिल किया। सुमन के घर के सभी लोग का झुकाव आर्ट ऑफ मौसिकी की तरफ था, पर बाहर गाने के लिए पाबंदियां थी, सख्त मना था। सुमन ने कहा, फिर भी मैं नेखती तुयम फैफ्तह मेल ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने से इनकार नहीं कर सकी। ये मेरी आवाम के लिए पहली परफॉर्मेंस थी। उसके बाद मुझे गाने के मौका मिला मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में, जो नेखतीन द्रियम फैतह में रिलीज हुआ था। उसी दौरान अदाकार शेख मुख्तर फिल्म मंगू तैयार कर रहा था, जिसके कंपोजर था मोहम्मद शफी शेख मुख्तार। मेरे गाने शुक्राची चांदनी से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने मुझसे फिल्म मंगू के लिए 3 गाने गवाए। सुमन ने कहा, कुछ ना मालूम की वजह के बिना पर बाद में संगीतकार ओपन नैयर ने मोहम्मद शफी की जगह ले लिया और मेरे 3 गानों में से सिर्फ 1 लोरी कोई पुकारे धीरे से तुझे फिल्म में बरकरार रखी गई। तो इसी तरह मैंने नेखती फिल्म फैफ्तह में रिलीज होने वाली फिल्म मंगू से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। आपने सुना कि सुमन कल्याणपुर की पहली हिंदी सॉन्ग फिल्म मंगू का गीत था। इस फिल्म में अदाकार शेख मुख्तर सुमन से 3 गाने गवाए थे, पर संगीतकार ओपन नैयर 3 गानों में से सिर्फ 1 गीत पसंद किया था। अब हम आपको फिल्म दखाबाज पिया में से ये गीत सुनवाते हैं।

संगीतकार चित्रगुप्त और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा तर्ज था आवासी महान गायिका सुमन कल्याणपुर की, जिसके बारे में हम बयां कर रहे हैं। फिल्म मंगू के फौरन बाद सुमन ने मौसिकार नशत की हिदायतकारी में 5 गाने फिल्म दरवाजे में गाई थी, जो नेहतीन फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुआ था, जिस फिल्म का पेशकश था इस्मत चुंगताय और हिदायतकार था शाहिद लतीफ। उसी साल नेहती फिल्म फेस्टिवल में सुमन ने मौसिकार ओपी नय्यर के मशहूर गाना मोहब्बत कर लो जी भर लो अजी किसने रोका है गाया था। साथ में थे मोहम्मद रफी साहेब और गीता दत्त जी। जी हाँ, इस गीत में मोहम्मद रफी साहेब और गीता दत्त की आवाज सुनाई देती है, पर सुमन ने कहा उसे इस गीत में गाने के लिए कुछ सोलो पंक्तियाँ, मतलब कुछ सोलो लाइंस मिली थी, लेकिन सिर्फ उसकी खिदमत हासिल की गई कोरस में। इस गीत के बाद सुमन ने दोबारा मौसिकार ओपी नय्यर के लिए कभी नहीं गाई थी। और एक बात यह भी है कि डिस्क पर सुमन का नाम के बारे में जिक्र नहीं किया गया। संगीतकार ओपी नय्यर ने कहा कि कुछ वजह से सुमन के घर वाले नहीं चाहते थे कि उनका नाम रिकॉर्ड पर आए। शायद इसलिए क्योंकि जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो उनके बेटी स्कूल में पढ़ती थी। अब हम आपको फिल्म आर पार में से वो मशहूर गीत सुनवाते हैं, आइए सुने।

फिल्म आर पार में से आपने अभी ये गीत सुना। आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त की, लेकिन गौर से सुनेंगे तो गीत में एक और आवाज़ सुनने को मिलती है। वो आवाज़ सुमन कल्याणपुर की है, लेकिन रिकॉर्ड में उनका नाम लिखा नहीं गया। तो जैसे मैंने कहा था, सुमन की वालदैन नहीं चाहते थे कि उनका नाम रिकॉर्ड पर लिखा जाए। अब हम आपको सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में ये जुगल गीत सुनवाते हैं। फिल्म जहां आरा में से ये गीत लिया है।

मौसिकार मदन मोहन की मौसिकी थी, कलाम था महान कवि राजेंद्र कृष्ण का। पर कब और कहाँ तलत महमूद सुमन को पहली बार सुना था? सुमन कल्याणपुर अब गाने में ज़्यादा ध्यान देने लगी और जब कहीं फंक्शन होता था तो सुमन को प्रोग्राम में शामिल करते थे लोग गाने के लिए। इसी तरह तलत महमूद ने एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सुमन कल्याणपुर को गाते हुए सुना और उनकी गायकी से बहुत मुतासिर हुए। तलत महमूद वॉज एरख ऑनडर द इंद्रुक फन हार स्टैम। अब एक बिल्कुल नई आने वाले लड़की उनका कैरियर बुलंदियों पर पहुंचा और फिल्मी दुनिया या कहिए संगीत की दुनिया को चौंका दिया जब तलत महमूद सुमन के साथ डुएट गाने पर राजी हुए, जिसने फिल्म इंडस्ट्री को अलर्ट होने पर मजबूर कर दिया। मैंने सुमन कल्याणपुर के बारे में बातें की है।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर के बारे में बयान किया। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं मोहम्मद रफी साहब से ये नगमा।

दिल छू लेने वाली नुहमा पेश था चित्रगुप्त की मौसिकी थी, कलाम था शायर मजरू सुल्तानपुरी का। हम रहे या ना रहे इस जहां में, गूंजेगी गूंजेगी मोहब्बत की ये सदा तुम्हारे लिए। फैसला कर लिया है मेरे दिल ने, मुझे बस तुम्हारे दिल में ही रहना है।

सदाबहार दो गाना पेश था मुकेश और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में। दुनिया के फिक्र से आज़ाद हूँ मैं, हमें क्या गरज की जहाँ क्या है, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं हम।

कमाल का गीत आपने अभी द ऑल राउंडर किशोर कुमार से सुना, उन्हीं का सजाया संगीत था और इस गीत का तर्स खुद किशोर कुमार ने लिखे थे। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच बोलता हूँ सच बोलता हूँ, खौफ की बंदिश नहीं करता, बंदिश मतलब बपैरकिंग, तो थोपिया तू अब तो आ जा।

0: live vanuit de hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer omkijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: बॉलीवुड के सबसे सुनहरे दौर को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए। उजाला प्रस्तुत करता है ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। मौसमी ओबेरॉय, शेखर कुमार, अयान मुखर्जी, बॉय के दाता दिन और निजाम वागिद हुसैन। लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स, यादगार धुने, पुरानी यादें और भावनाओं से भरी एक शानदार शाम। शनिवार 19 सितंबर को मीरवाट एम्स्टर्डम में। अपने टिकट अब भी बुक करें।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। कवाली जो आपने अभी सुना कवाल इस्माइल आज़ाद की आवाज़ में थी। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, क्योंकि यू आर के ज़रिए हर तरह के गाने सुनने को मिलते हैं।

अभी आपने हरिहरन, अभिजीत और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में ये गीत सुना। तर्ज को लिखे थे आनंद बख्शी ने। कुमार सानू और आका याग्निक से लीजिए पेश है ये दो गाना, जतिन ललित की मौसीकी है, कलाम जावेद अख्तर का।

मोहब्बत भरी अंदाज में पेश था ये जुगल गीत। इसी अंदाज में पेश है अगला गीत। सुनवाने से पहले अर्ज है, एक वो जो नजर अंदाज करता है मुझको, एक मैं हूं कि दिलो जान से दीवाना उसका।

फिल्म 20 साल बाद में से पेश था ये डुएट। लोग चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं, पीछे अपनी यादें छोड़ जाते हैं। एक पल में वो आपके साथ है और दूसरे पल में वो आपसे दूर हो जाते हैं। वो तो चले गए ऐ दिल, यादें से उनकी प्यार कर।

गए ऐ दिल यादे से उनकी प्यार कर। डर भरा गीत पेश था राजेंद्र कृष्ण का लिखा तर्स, संगीत से सवारे थे संगीतकार सज्जद ने। अब आए सुने मोहम्मद रफी साहिब से अगला नगमा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी में नगमकार है आनंद बख्शी।

अनमोल नगमा पेश था मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। इसी खूबसूरत अंदाज में लीजिए अगला नगमा पेश है।

सदा बहार नगमा पेश था, शायर मजरू सुल्तानपुरी का कलाम था, ओपी नैयर की मौसिकी थी। आशा भोसले की शोखी आवाज में पेश है ये गीत।

भरकता गीत पेश था, आवाज थी जी हाँ आशा भोसले की। कितनी रातें बीत गए, कितनी रातें बीत गए, कितने दिन बीत गए, बस नहीं बीता, बस नहीं बीता तो यादों का वो पल, गुजरा हुआ वो पल और गुजरा हुआ वो कल, नहीं बीती, नहीं बीती तो आँखों की नमी और तेरी कमी।

दिल छू लेने वाले गीत पेश था मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। कैसे कहूँ इश्क में तेरे, कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूँ ख्वाब तेरे, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो।

माँ का गीत पेश था, आवाज थी किशोर कुमार की। मैं खामोश हूं तो बस तुम्हारी खुशी के लिए, ये मत समझना कि मेरा दिल नहीं दुखता। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दे।

फिल्म आपकी परछाई में से पेश था ये नगमा। मदन मोहन की मौसिकी थी, कलाम था राजा मेहदी अली खान का। तलत महमूद से आइए सुने ये नगमा।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। नमस्कार। खादिमा थी।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

के साथ गमी है पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अलमेर से परिवार नेपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 81 साल की आयु में एनन तख्तख यार औत स्वर्गीय धर्म पत्नी स्वर्गीय पंडिता यशोमती नेपाल कन्हाई सिंह का पति लड़कन राजकुमार नेपाल, अनिल कुमार नेपाल और पवन कुमार नेपाल के पिता, पोता अक्षय कुमार, पोतिन विभा नेपाल और पोतिन चांदनी जुनेया के आजा, पोदमाद रॉय का अजवा ससुर और परनातिन अमायरा का परनाना, अम्स्टरडम टेक्सेरा द मातोस्त्रात का रहने वाला श्रीमान हरिदत्त अयोध्या प्रसाद नेपाल की मृत्यु वोन जोरग सेंट्रम एबन हेजर अम्स्टरडम जैतोस्ट में हो गई है। जोधा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले निकेरी राम अवध सुचित वह का रहने वाला था। अलमेर से लड़कन नेपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 81 साल की आयु में एनन तख्तख यार औत स्वर्गीय धर्म पत्नी श्री पंडिता यशोमती नेपाल कन्हाई सिंह का पति लड़कन राजकुमार नेपाल, अनिल कुमार नेपाल और पवन कुमार नेपाल के पिता अक्षय कुमार, विभा नेपाल और चांदनी जुनेया के आजा, रॉय का अजवा ससुर, अमायरा का परनाना, अम्स्टरडम टेक्सेरा द मातोस्त्रात का रहने वाला श्रीमान हरिदत्त अयोध्या प्रसाद नेपाल की मृत्यु वोन जोरग सेंट्रम एबन हेजर अम्स्टरडम जैतोस्ट में हो गई है। जोधा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले इलाका निकेरी राम अवध सुचित वह का रहने वाला जो था। अर्थी के दाह क्रिया ये आज मंगलवार के दिन में 12:30 बजे से फनफ हालफेन किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-23-78-73-61 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार नेपाल के दुख में शामिल।

0: उजाला फेरा।
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम जोइटोस्ट मिलिंगनहॉफ से परिवार परस मुरली बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार को 87 साल की आयु में जीवन तख्त यार औत श्रीमान परस मुरली की बड़की श्रीमती खैरदा मुरली गोपाल की बहन और लड़कन के मौसी अलमीरा की रहने वाली श्रीमती प्रभावती गोपाल की मृत्यु अलमीरा में हो गई है और जिन्हें लोग जीवित में रोसा गोपाल के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अम्स्टर्डम जोइटोस मिलिंगनहॉफ से परिवार परस मुरली बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार को 87 साल की आयु में जीवन तख्त यार औत श्रीमान परस मुरली की बड़की श्रीमती खैरदा मुरली गोपाल की बहन और लड़कन के मौसी अलमीरा की रहने वाली श्रीमती प्रभावती गोपाल की मृत्यु अलमीरा में हो गई है। इन्हें लोग रोसा गोपाल के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे के दिन में 2 बजे दोंद्र दखांस्तांद त्वे उर किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओकमेरवेख 275 ओकमेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार्थ फुरजोरखिंग परिवार गोपाल परिवार मुरली और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार आप सुनिए। अल्मेरा से लड़कन पंचू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल सोमवार को 62 साल की आयु में त्वेयन जस्तखियार और विधवा बिसुंदेई पंचू छोटू का बेटा प्रशांत सुनैना और दीपक पंचू के पिता अनुष्का मौरिस और योलंदा के ससुर साजन यश और लक्षा के आजा जैन का नाना अल्मीरा का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू की मृत्यु अल्मीरा में हो गई है। अशोक के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अल्मेरा से लड़कन पंचू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार यानी कि कल 62 साल की आयु में त्वेयन जस्तखियार और मां विधवा बिसुंदेई पंचू छोटू का बेटा प्रशांत सुनैना और दीपक पंचू के पिता अनुष्का मौरिस और योलंदा के ससुर साजन यश और लक्षा के आजा जीन का नाना अल्मेरा का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू की मृत्यु अल्मेरा में हो गई है। अशोक के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक ऐतफार्ट सेंट्रम वेस्ट हार्द के मुर्दालय ओक मेयर वैख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया ये आने वाले बीफे के सुबह 10:30 बजे दोंदर द खोखतन थालफ एल्फ किए जाएंगे। वेस्ट हार्द क्रीमाटोरियम ओक मेयर वैख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्ट फुरजोरखिंग परिवार पंचू के दुख में शामिल है।

यहीं से उजाला रेडियो पर आप सुनेंगे शोक प्रोग्राम यादें। प्रोग्राम में एक गीत आप सुनेंगे और ये पेश है अलमेरा से तीन लड़कन राजकुमार नेपाल, अनिल कुमार नेपाल और पवन कुमार के तरफ से अपने स्वर्गीय पिता स्वर्गीय श्री हरिदत्त अयोध्या प्रसाद नेपाल की याद में। 81 साल की आयु में इनकर मृत्यु हो गई है बीते बुध को, जोधा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। तो इन्हीं की याद में अगला गीत जो आप सुनेंगे तो पेश है इन लोगों के स्वर्गीय माँ स्वर्गीय पंडिता यशोमती की आवाज में। गीत आप सुनेंगे

0: भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। और गीत अभी आप सुने शोक प्रोग्राम यादें में, और गीत पेश की गई है अलमेर से सभी लड़कन राजकुमार नयपाल, अनिल कुमार नयपाल और पवन कुमार की तरफ से अपने स्वर्गीय पिता स्वर्गीय श्री हरिदत्त अयोध्या प्रसाद नयपाल की याद में। 81 साल की आयु में बीते बुधिनकर मृत्यु हो गई है अम्स्टरडम में, जोधा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। तो गीत जो आप सुने पेश की गई है इन लोगों की स्वर्गीय माँ स्वर्गीय श्री पंडिता यशोमती की आवाज में। और यहीं तक आप सुने शोक प्रोग्राम यादें।
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment op de A12 vertraging richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er vanaf 7 naar 10 minuten langer over. Op de A28 richting Zwolle woedt een bermbrand naar aanleiding van een boerenprotest. De rechte rijstrook is dicht en je doet er tussen Amersfoort-Vathorst en Strandnulde 10 minuten langer over. Ook nog file op de A59 Den Bosch richting Os, tussen Kruisstraat en Os, 5 kilometer met 10 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujjala Radio.

You Are Ujala Radio, यही सुन वालों, मैं हूँ लोहित महावीर एंड अभी हम लाने वाले हैं आपके वास्ते आज का हेडलाइंस में क्या है, समाचार क्या है और भी समाचार है आज का समाचार आने वाले दिनों के लिए समाचार। आज है मंगलवार, मंगलवार 15 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का, वही प्रोग्राम कॉफी चाय मेरा शो, यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। आप

ऐसा प्यार ना करना सुनो लो, इतना प्यार ना करिए, इतना प्यार ना करिए कि तू बर्बाद हो जाइए। प्यार करना है तो दिल और दिमाग के साथ, मैं दत वैरगीत, जब प्यार हो जाए तो दिमाग ना कमा है, और जब दिमाग कमा है तो प्यार

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलम, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: कोट यार तोर जन्मदिन है, तोर सालगिरह है, अब खाए त्राव, तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, या किसी का मुंडन संस्कार है, उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं। 15 फरमाइश फोर मार होने तोरो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.nl।

उजाला रेडियो पर ये सॉन्ग अभी अभी खत्म हुआ है और उजाला रेडियो के जरिए अगर आपको जो भी कामकाज दिलाना है स्टूडियो मेल ना info@ujala.net

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवराजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवराजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

Oejala, oejalala, he, aapke waaste zijn hallo. Zaterdag, Sanitje, 19 september, ko Meervaarttheater mee, ha. Amsterdamke Meervaarttheater mee, je jobjes concert, hoe nu wel, he. The greatest voices of Bollywood. Mera hi hona. जिसमें आप लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, माइकल मुकेश, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सोनू निगम एंड नॉक फेल मेयर गाने वाले के गाने आप सुनेंगे, ला रहे हैं उजाला आपके वास्ते, द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड, सैटरडे 19 सितंबर, टिकट के दाम कुछ टिकट बाकी रह गए हैं, रंग 1 20 यूरो, रंग 2 15 यूरो एंड हैव यू एन स्टासपास, दैन कॉस्ट योर कार्डचे मार 3,50 €, चेक ऑप meervaart.nl, इनलोप फनाफ 7 uur, Meervaarttheater mee, zaterdag 19 september.

मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर मार हॉनेट यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

जल रेडियो कॉफी एंड चाय मिदक शो अभी शुरू होने वाला है, जरूर आप सुन लेना जुम दें कॉफी एंड चाय ऑफ उजाला रेडियो। सात दिन वाले हैं आनंद चंद्रिका सिंह और साथ में मैं हूं।

वाणी उजाला रेडियो यही सुन वालों, मैं हूं लोहित महावीर एंड अभी हम लाने वाले हैं आपके वास्ते आज का हेडलाइंस में क्या है, समाचार क्या है और भी समाचार है आज का समाचार आने वाले दिनों के लिए समाचार। आज है मंगलवार, मंगलवार 15 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का, वही प्रोग्राम कॉफी चाय मिल्क शो, यहीं से हम शुरू कर रहे हैं आपके वास्ते। वेलकम ऑफ दिस

ऐसा प्यार ना करना सुनो रो, इतना प्यार ना करिए, इतना प्यार ना करिए कि तू बर्बाद हो जाइए। प्यार करना है तो दिल और दिमाग के साथ, मैं दत्वैरगीत, जब प्यार हो जाए तो दिमाग ना कमा है, और जब दिमाग कमा है तो

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

के साथ गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनिए। अलमेर से लड़कन जॉनी और वोनी घेसाई दुबे और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार के दिन में 87 साल की आयु में जीवन तख्तियार और लड़कन जॉनी और वोनी घेसाई दुबे की मां और लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अलमेर की रहने वाली श्रीमती प्रभावती गोपाल की मृत्यु अलमेर में हो गई है। रोसा गोपाल के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अलमेर से जॉनी और वोनी घेसाई दुबे और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार के दिन में 87 साल की आयु में जीवन तख्तियार और जॉनी और वोनी घेसाई दुबे की मां सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी पर आजी अलमेर की रहने वाली श्रीमती प्रभावती गोपाल की मृत्यु अलमेर में हो गई है। रोसा गोपाल के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे के दिन में 2 बजे दोंदर द खानस्तांद ट्वी उर किए जाएंगे। वेस्ट खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग परिवार घेसाई दुबे और परिवार गोपाल के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार आप सुनिए। अल्मेरा से लड़कन पंचू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल सोमवार को 62 साल की आयु में त्वेयन जस्तखियार और विधवा बिसुंदे पंचू छोटू का बेटा प्रशांत सुनैना और दीपक पंचू के पिता अनुष्का मॉरिस और योलंदा के ससुर साजन यश और लक्षा के आजा जीन का नाना अल्मेरा का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू की मृत्यु अल्मेरा में हो गई है। अशोक के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अल्मेरा से लड़कन पंचू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार यानी कि कल 62 साल की आयु में त्वेयन जस्तखियार और मां विधवा बिसुंदे पंचू छोटू का बेटा प्रशांत सुनैना और दीपक पंचू के पिता अनुष्का मॉरिस और योलंदा के ससुर साजन यश और लक्षा के आजा जीन का नाना अल्मेरा का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू की मृत्यु अल्मेरा में हो गई है। अशोक के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक ऐतफार्ट सेंट्रम वेस्ट हार्द के मुर्दालय ओक मेयर वैख 275 अम्स्टरडाम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया ये आने वाले बीफे के सुबह 10:30 बजे दोंदर द खोख्तन थालफ एल्फ किए जाएंगे। वेस्ट हार्द क्रीमाटोरियम ओक मेयर वैख 275 अम्स्टरडाम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्ट फुरजोरखिंग परिवार पंचू के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टर्डम ओस से परिवार पंचू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल सोमवार को 62 साल की आयु में त्वेयन जस्तखियार और मां विधवा बिसुंदेया पंचू छोटू और स्वर्गीय पिता श्री राम प्रसाद पंचू के बेटा प्रशांत दीपक और सुनैना रसियावन पंचू के पिता दो पतो एक दामाद के ससुर करला जगेसर पंचू गीता सौदागर पंचू वती देंद्राल पंचू आशा पंचू और रोसिता गयाधर पंचू के दुलारा भाई चार बहनों के सार 11 लड़कन के मामा 7 पतो और एक दामाद के ममवा ससुर 15 लड़कन के आजा और नाना अलमीरा का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू के मृत्यु अलमीरा में हो गई है। अशोक के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अम्स्टर्डम ओस से परिवार पंचू छोटू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार यानी कि कल 62 साल के आयु में त्वेयन जस्तखियार और मां विधवा बिसुंदेया पंचू छोटू और स्वर्गीय पिता राम प्रसाद पंचू के बेटा लड़कन प्रशांत दीपक और सुनैना के पिता दो पतो और एक दामाद के ससुर करला जगेसर पंचू गीता सौदागर पंचू वती देंद्राल पंचू आशा पंचू और रोसिता गयाधर पंचू के दुलारा भाई चार बहनों के सार 11 लड़कन के मामा 7 पतो और एक दामाद के ममवा ससुर और 15 लड़कन के आजा और नाना अलमीरा का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू की मृत्यु अलमीरा में हो गई है। अशोक के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एटफार सेंट्रम वेस्ट हार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे के सुबह 10:30 बजे डोंडरदाग ओख्तेंड हल्फ एल्फ किए जाएंगे वेस्ट हार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में।

और मृत्यु समाचार, Den Haag, Zoetermeer, Orpijn, Akkernoot, Dorpse, परिवार जगे सरपंचो बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते सोमवार यानी कि कल 62 साल के आयु में 62 औत बहनोई श्रीमान एस जगेसर का सार बहन श्रीमती कार्ला जगेसर पंचू का भाई लड़कन रवीन और प्रवेश जगेसर के मामा शरिस्मा जगेसर भंगूर और शरीना जगेसर तिलक के ममवा ससुर शनाया वियान और शिवा जगेसर के आजा अलमेर का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू के मृत्यु अलमेर में हो गई है। अशोक के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। Den Haag, Zoetermeer और पैन अकरनोत दौरब से परिवार जगेसर पंचू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। कल सोमवार को 62 साल की आयु में 62 औत बहनोई श्रीमान एस जगेसर का सार बहन श्रीमती कार्ला जगेसर पंचू का भाई लड़कन रवीन और प्रवेश जगेसर के मामा शरिस्मा जगेसर भंगूर और शरीना जगेसर तिलक के ममवा ससुर शनाया वियान और शिवा जगेसर के आजा अलमीर का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू की मृत्यु अलमीर में हो गई है। अशोक के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका है कल बुध के रात में 7 से 8 तक एटफार सेंट्रम वेस्ट हार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे के सुबह 10:30 दुंदरदास्तांद हल्फ एल्फ किए जाएंगे वेस्टगार्ड क्रिमेटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

और मृत्यु समाचार को सुनिए। अम्स्टर्डम नॉर्थ, द गोरन और बेल्जियम से आशा पंचो और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल सोमवार को 62 साल की आयु में त्वेंजस्तक यार और बहन आशा पंचू का भाई लड़कन संतोष और अमर बाबूलाल के मामा दोपतो नाताशा बाबूलाल बदलू और ईरेश बाबूलाल मातियो के ममवा ससुर रिशाना का आजा अलमेरा का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचो की मृत्यु अलमेरा में हो गई है। अशोक के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अम्स्टर्डम नॉर्थ, द गोरन और बेल्जियम से आशा पंचो और लड़कन बाबूलाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। कल सोमवार को 62 साल की आयु में त्वेंजस्तक यार औत बहन आशा पंचू का भाई लड़कन संतोष और अमर बाबूलाल के मामा नाताशा बाबूलाल बदलू और इरेश बाबूलाल मातियो के ममवा ससुर रिशाना का आजा अलमेरा का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू की मृत्यु अलमेरा में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है कल बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे सुबह 10:30 बजे दोंदरदख आंस्टांद हालफ एलफ किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रिमेटोरियम ओक मेरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोर्किंग समस्त परिवार पंचू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने। उजाला रेडियो है ये, सुनने वालों यहीं से शोक प्रोग्राम यादें आप सुनेंगे और इसमें एक भजन होंगे और ये भजन पेश है माँ अम्स्टर्डम ओस्ट की रहने वाली माँ विधवा बिसुंदिया पंचो छोटू के तरफ से अपने स्वर्गीय बेटा लड़कन प्रशांत दीपक और सुनैना के तरफ से स्वर्गीय पिता दो पतो एक दामाद की तरफ से स्वर्गीय ससुर आगे में चलकर कारला जगेसर पंचू गीता सौदागर पंचू वती दंदराल पंचू आशा पंचू और रोशिता गयाधर पंचू के तरफ से स्वर्गीय दुलारा भाई चार बहनोई के तरफ से सार ग्यारह लड़कन के मामा सात पतो एक दामाद के मामुमा ससुर और पंद्रह लड़कन के तरफ से स्वर्गीय आजा और नाना स्वर्गीय श्री अशोक कुमार पंचू की याद में इनकर मृत्यु जो हो गई है कल सोमवार को अलमेर में, तो इन्हीं के याद में ये भजन प्रोग्राम में पेश है।

0: सोना सोना लागे ब्रज का धाम, गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम।
1: और सुना सुना लागे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गीत आप सुने, भजन आप सुने। पेश की गई अम्सलम ओ से माँ विधवा बिसुंदैया पंचो छोटू की तरफ से स्वर्गीय बेटा, प्रशांत दीपक और सुनैना की तरफ से स्वर्गीय पिता, दो पतो एक दामाद की तरफ से ससुर, कारला जगेसर पंचो, गीता सौदागर पंचो, वती दंदराव पंचो, आशा पंचो और रोशिता गयाधर पंचो की तरफ से दुलारा स्वर्गीय भैया, चार भानोई की तरफ से सार, ग्यारह लड़कन की तरफ से मामा, सात पतो एक दामाद के मामा ससुर, पंद्रह लड़कन की तरफ से स्वर्गीय आजा और नाना, स्वर्गीय श्री अशोक कुमार पंचो की याद में गीत पेश की गई। और इस शोक प्रोग्राम यादें में एक और गीत आप लोग सुनेंगे और ये गीत पेश है दनहाख जुतरमेर और पैन आकरनो दौरब से बहन श्रीमती कारला जगेसर पंचू के तरफ से स्वर्गीय दुलारा भाई, बहनोई एस जगेसर की तरफ से स्वर्गीय सार, लड़कन रवीन और प्रवेश जगेसर की तरफ से स्वर्गीय मामा शरिस्मा जगेसर भांगूर और शरीना जगेसर तिलक के तरफ से स्वर्गीय मामुआ ससुर, शनाया व्यान और शिवा जगेसर के तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय अशोक कुमार पंचू की याद में अलमेरा में 62 साल की आयु में कल सोमवार इनकर मृत्यु हो गई है। इन्हीं की याद में यह गीत पेश है।

0: दुवरवा छूटल और भैया से नतवा टूटल गीत आप सुने जो कि पेश की गई है दनहाख जूतरमेर और पैन आकर नौ दौर के रहने वाले बहन श्रीमती कारला जगेसर पंचू की तरफ से स्वर्गीय दुलारा भैया बहनोई श्रीमान एस जगेसर की तरफ से स्वर्गीय सार लड़कन रवीन और प्रवेश जगेसर की तरफ से स्वर्गीय मामा शरिस्मा और शरीना की तरफ से स्वर्गीय ममा ससुर शनाया वियान और शिवा जगेसर की तरफ से स्वर्गीय आजा स्वर्गीय श्री अशोक कुमार पंचू की याद में 62 साल की आयु में कल सोमवार इनकर मृत्यु अलमेर में हो गई है। अशोक के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे तो इन्हीं की याद में ये गीत पेश की गई है सुनने वालों। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्थ फुरजोरखिंग इस दुखी परिवार के दुख में शामिल है और यहीं तक आप सुने शोक प्रोग्राम यादें।
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk staat er nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Vanaf Vianen 6 kilometer, 40 minuten vertraging, want bij Everdingen is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

और देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा, सोचे भी तो क्या सोचे तुम्हारे बिना। लता जी के साथ आप सुने उदित नारायण को, फिल्म फर्ज का गीत, और ये उजाला रेडियो है।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: बॉलीवुड के सबसे सुनहरे दौर को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए। उजाला प्रस्तुत करता है ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। मौसमी ओबेरॉय, शेखर कुमार, अयान मुखर्जी, बॉय के दाता दिन और निजाम वागिद हुसैन। लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स, यादगार धुनें, पुरानी यादें और भावनाओं से भरी एक शानदार शाम। शनिवार 19 सितम्बर को मीरवाट एम्स्टर्डम में। अपने टिकट अब भी बुक करें।
3: दिल के चैन
4: उजाला रेडियो, हमारा उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो है सुनने वालों, और यहीं से आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम दर्दे दिल। दर्दे दिल में दर्द भरे गीतों हम पेश करेंगे आपके लिए। दर्द भरी गीतों बहुत लोगों को बेहद पसंद है, इसलिए इस प्रोग्राम आप लोग उजाला रेडियो पर अब सुनेंगे, आने वाले दिनों में भी, आज भी प्रोग्राम दर्दे दिल। तो चलिए पहला गीत इस प्रोग्राम में हम सेलेक्ट किए हैं आज मुकेश जी की आवाज में।

मुकेश जी की आवाज, फिल्म मर्यादा का गीत। और इस फिल्म में उन दिनों काम किए थे राजेश खन्ना के साथ राजकुमार और माला सिन्हा।

डूबे रुला के गया सपना वो मेरा। लता जी की आवाज में आप गीत को सुने। फिल्म का नाम जुअल थीफ और काम किए इस फिल्म में देव आनंद, अशोक कुमार, विजयंती माला एंड तनुजा जी।

इतना भी भोला ना चाहो तुम मुझे यूं भोला ना पाओगे। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत को आप सुने, फिल्म का नाम पगला कहीं का, और काम किए इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ आशा परेख जी। उजाला रेडियो है ये और प्रोग्राम दर्द दिल, जिसमें दर्द भरी गीतों पेश है।

0: रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया, रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया। फिल्म रास्ते का पत्थर का गीत, और इस फिल्म में काम किए थे 1972 में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा एंड लक्ष्मी छाया।
1: Vanuit de hoofdstad.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
1: U luistert naar Uzala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie en Chai exclusief op UR, Uzala Radio.

जल रेडियो कॉफी एंड चाय मिदक शो अभी शुरू होने वाला है, जरूर आप सुन लेना जूम दें कॉफी एंड चाय ऑफ उजाला रेडियो। साथ देने वाले हैं आनंद चंद्रिका सिंह और साथ में मैं हूं।

यू आर उजाला रेडियो, यही सुन वालों, मैं हूँ लोहित महावीर एंड अभी हम लाने वाले हैं आपके वास्ते आज का हेडलाइंस में क्या है, समाचार क्या है और भी समाचार हैं आज के समाचार आने वाले दिनों के लिए समाचार। आज है मंगलवार 15 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का, वही प्रोग्राम कॉफी चाय मिल्क शो, यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। आप

ऐसा प्यार ना करना सुनो लो, इतना प्यार ना करिए, इतना प्यार ना करिए कि तू बर्बाद हो जाइए। प्यार करना है तो दिल और दिमाग के साथ, मैया दत्वेरगीत। जब प्यार हो जाए तो दिमाग ना कमा है, और जब दिमाग कमा है तो

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो. और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो.